एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दास है हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंदनो। सिमरौ श्री हर राय, श्री हरि कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे है। घर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजां प्यारिआं चौहां साहिबजादिआं, चालिआं मुकतिआं, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिआ वंड छकिआ। दिग चलाई तेग वाही, देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल चेराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नाहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निवाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी, बलो जी वाहे गुरु, बलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्चे मत पात दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्नात पंथ नु वसोड़िया गया है खुले दरसन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान ने

ना सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम महंदियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण सोत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते

चिंत पवन मन परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवे कबीरा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित बहु अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत।

कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है।

जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, नेह चल राज कमाओ। जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, नेह चल राज कमाओ।

मर्तबा, रंग परंग नेक ना जपन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जाने ला, सब किछ तेरे वस तेरा कर पला, तेरे कर नंद वधाई तुद कर, मान महता तेज अपना आप जर।

लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया केले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म दूर।

मां शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोस्त सवै तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन कवाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो वध कियो काट काट के

जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपने बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कहे पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बाहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दोष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ

हृदय बसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पाओ जल विखमे असगाह गुर सबदी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोए न जाए जे आवै तुदयाए विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में आपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दा साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जेन तुम भेजे तिन है बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तोना निहचल राज कमाओ जेन तुम भेजे तिन है बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तोना निहचल राज कमाओ

अचरज किया करनै हारे, नानक सच वडियाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सर्मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्त पाया रख्या परमेश्वर, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तन चरण रख्या

राग कानड़ा महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख नृपौ निर्वैर अकाल मूर्त

0: एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मेलांत जम एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवा सिफत खसाम नूर अरसह कुरसह तुदरिठी सची पातशाह जन्म जन्म दी सजन सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजन सचा पातशाह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पंजवा जतन कर मान खुदह कावा ओह अंतर जामी जान पाप करी कर मुकर पावा पेख कर निर्वाण जतन कर मान खुद कावा ओह अंतर जामी जान पाप करे कर्म कर पावा पेह कर निर्वाण जानत दूर तुम्हे प्रभ नेरा उत ताका उत ते उत पेखा आवा लोभी फेरा रहा जब लग टुटा नाही मन भरमा तब लग मुकत ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई जब लग टुटा नाही मन भरमा तब लग मुकत ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जान सोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्व रखिया गुरदयाला है भय दुख विनाशन है भगत वचलनाथ नाथे शरण नानक पुरख चित्ता है बिलावल महला पंजवा ताती वावन लगई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारा रामकार दुख लगा ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जनमंत बनाई राम नाम औख दिया कल बलाई रहाओ और राख लिए तन रखन हार सब याद मिटाई कह नानक कृपा भई प्रा भय सहाय सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कार कीर्ति आखिया करते का हुई विचारो तित कर गाव सोहेला सिबरो सृजनहारो तुम गाव मेरे निरभाव का सोहेला हों बारी जित सोहेला सदा सुखोय रहाओ नित नित जीड़े संभाली आनंद देखा गा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवै तह दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तीर देहो सज्जन सीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल घर घर एह पाहुचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शै घर शै गुरु शै उपदेश गुर गुरे को बेसानेक बाबा जाकर करते कीर्त होई सो कर राख बढ़ाई तोई रहाओ बिसोए चसिया घड़िया पहरा थिती बारी माह हुआ सूरज को रतन एक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माले आन लो पवन चवरो करे सगल मन राई फूलंत ज्योति कैसी आरती होई पव खंडन तेरी आरती अनहता शब्द बजंत भेरी रहाओ सहस्ताव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत ननायक तोही सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन सहस्तव गंध एव चल तुमोही सम जोत जोत है सोई तिसदा चानन सम चानन होई गुरसाखी जोत प्रगट होई जो तिस भावै सो आरती होई हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही प्यासा कृपा जल्द है नानक सारिंग कौ हुए जाते तेरा नाई वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा ही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा ही
1: ਕਰ ਸਾਧ ਅੰਜਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾ ਹੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹੀ ਚੁਬੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹੀ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿਹੀ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੀ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੀ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖਮੰਡਾ ਹੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲ ਹੋਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੀ, ਮਾਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆ ਵੈ ਹੋ ਰਸ, ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਮਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵ ਹੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सपहु गुर प्रसाद आसा।

पौड़ी अपनी आप साजी आप चुना दोई कुदरे साजी एक रासन ठोचा दाता करता आप तू तुस देवे करे पसा तू जानो ही सबसे दे लैसे जिंद को आओ।

0: जग मैं परवर निरंकार आकार जो जग मंडल करयो जय कहते हैं भरपूर शब्द दीपक दीपायो जय सिखे संग रहो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लैने संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जप तप सत संतोख बिख दर्शन गुर सिख शरण परे ते उबरे चोर जंपर की लिख भगत पाए भरपूर हृदय तेरे करता रे गुरु गौर दरियाओ पलक डुबंते तारे नानक कुल निमल अवतरयो गुण करता रे उतरे गुरु अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर पर
1: चित चितवो अरदा।

जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करना।

चढ़ियो धर्म तणख कर गयो भगत शीला सर लड़ियो पै निरपोहर टल मन शब्द गुर ने जागड़ियो काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहार ते जोतना निरपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सलपन तै दल जितो एव युद्ध कर।

देवी है अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई, होवै सिफत खसम दी, नूर अर साहु कुर साहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदै साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु, सतनाम।

साम कहे से तंबर स्वामी सच में से साच रहे सब कुछ असमावे रे कहे रहे भरपूर राम नाम देवे सूर नाए लय प्रास जाए नानक ताओ मुखंतर पाहे जुज में जोर चली चंद्रावन कान कृष्ण जात पहया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलहो पया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे त्रुक पठानी अवल किया चारे वेद हुए सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पहु पवित करनी सदाए तो नानक।